0: हजुरको रेडियो 102.1 मेगा।
1: लो आयो है क्वालिटी मा नम्बर 1 दाममा सबैभन्दा कम।
2: ओ प्रकाश।

0: 4440, इमेल dhramechap@gmail.com।
1: हिंसा मुक्त समाज निर्माणमा हाम्रो साथ एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र रामेछाप अस्पताल रामेछाप।